How dare you? खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की। किस हक से तुमने मुझे छुआ? तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पे। क्यों बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करते हो? दूर रहो मुझसे।

0: What do you mean? Already I have a boyfriend. दिख नहीं रहे हो, मेरा बॉयफ्रेंड बैठा हुआ है यहाँ पर और तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो?
1: कौन है, कहाँ पर है? अरे पागल हो गए हो क्या?

0: ऑलरेडी आई हैव अ परफ्यूम, दिख नहीं रहे हो, मेरा बॉयफ्रेंड बैठा हुआ है यहाँ पर और तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो?
1: कौन, कहाँ पर? अरे पागल हो गए क्या?

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ.
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी.
3: तपाईँ रेडियो मर्सेन्जी एफएम

गन्तव्य पुरानो तर उचाइ नयाँ बन्दीपुर केबलकार यही जेठ 31 गतेबाट व्यावसायिक सञ्चालनमा छ। बन्दीपुर केबलकार, प्रकृतिसँग रमौ खुलेर।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: दिदी अल्मलै पर्नु भयो त, के खोज्नु भएको त्यसरी?
1: ए बाबु पो, जोकतौल गर्ने डिजिटल ढक तराजु चाहिएको थियो, यता कता पाइन्छ होला?
0: हाम्रै बेसी सहर नगरपालिका साथ एनएमबी ब्याङ्क अगाडि रहेको एएस किचन हाउसमा जानुहोस् न, त्यहाँ नेपाल सरकारबाट नापतौल इजाजत प्राप्त जस्तो भने त्यस्तै डिजिटल ढक काँटाहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ।
2: हजुर, नेपाल सरकार नापतौल इजाजत प्राप्त डिजिटल ढक काँटा तराजु आदि थोक तथा खुद्रा मूल्यमा पाउनुका साथै मर्मत पनि गरिन्छ। साथै किचनका सम्पूर्ण सामग्री सामानहरू थोक तथा खुद्रा मूल्यमा बिक्री गरिन्छ।
3: प्रोपाइटर दिलीप श्रेष्ठ, एएस किचन हाउस, बेसर नगरपालिका साथ एनआईएमबी ब्याङ्क अगाडि। थप जानकारीका लागि सम्पर्क 9856074486।
4: समिति हो चौदह के में बोधे लोटी पर दी रो बैंक ने विवरण पी भी है मुई खाता लिखे हमरो
5: खाई खाई बहु कोई लोटरी भर दिलवा
6: आई समी जो लोटरी पर दी हूँ छापता ही गुरी
5: भर दी आ भर दी बल लोटरी खाली पर दी बा सैली मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खाने बने खाई बिसा खाई मई विश्वास आलन होने खाले पनी आप ही विवरण खाई मई आपिन खबर बने वित्तीय संस्था के पासवर्ड पिन खाई मई आरी सुमी बैंक आप ही बने आरी
6: सिद्धार्थ ब्याङ्कर क्यारे जन हेजरी जारी सन्देश
7: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

हे प्रभु कैले मथुरा कैले द्वारका कैले हस्तिना द्रौपदी को बिला नामा काटै पसिना विचारदै रक्त तन्मा दुध भरने बिना मूल्य फल अन्न सृष्टि गर्ने सवारी को जुठो र काटो भयर समिन्जिनी बनाउने सुदामा को मैलो कन्ठ्या चाकैमा रमाउने भक्त को दास दुष्ट को नाश प्राण को जंजीर धर्म।